0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

सारी छयाहुन राजा नौशकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा।

0: थियो पापको क्या डर मान्छ तोर बलले जसले बुहारी लियो साह्रै दुखी भएर सुगरी बजीले बिन्ती गरेको सुनी सुरीको अब दुख हर्दछु भने अन्तकरणले गुनी।
1: मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर बिमल दस जो दायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हर कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिम्रो उजागर रामदूत अद्वैत बलधामा अञ्जनी पुत्र पवन सुतराम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार्य स्मृति संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बरजाओ ध्वज विराजई कांदे मुझे जनव साजई शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगा दरवाया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र की काज संहारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हर्षियुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई सहज बदन तुम्हारा जस गावे अज कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा हेम कुबेर दीपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्री भई किना राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिल्यो ताई मधु फल जानु प्रभु मुन्द्री का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर्जन आई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुगर तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखबारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काउ को डरना आपन तेज समारोह आपे तिनोलोक हागते कापे भूत पिता से निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा इनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध।

देव जी आ रहा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता अस्वर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्वसु करई संकट कटई मिट सभी पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी माँ सुख हुई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा किदनाथ हृदय मोहडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवं श्री वर रामचंद्र शंकर जी वज जय हनुमान जय बजरंग बली।